ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

चमकदा नूरे मुहम्मदी, चमकदा आया नूरे मुहम्मदी, चमकदा आया अर्श फरश ते चानन लाया, अर्श फरश ते।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कब्र को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मजीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, प्रैक्टिकल इनसाइट्स एंड पावरफुल मेडिटेशंस एट हरिबेन बच्चूभाई नगरेचा हॉल, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra, 07977201226. Mirdosh Kumar, 07899055525. Gurkirit, 07886545970. Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: to rent. Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

एक कहानी है उन सारे नौजवानों की जो डालर ते पौंडा की चाह विच अपना पिंड अपना देश छड़ के परदेसां नू चले जाते हैं। उत्थे जाके जदों उन्हां नू सारे काम करने पैंदे हैं ते उन्हां दे दिल ते की बीतती है। मैं सचिन आहूजा जैली दे नाल गीतकार दविंदर छिंदा दे बोल कुछ इस तरह पेश करदा हां।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: Classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टूडियो पर और जनाब 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। और अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर पे या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अभी का जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक दो बजे तक। मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। तो चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत बड़ा मस्ती भरा गीत है, सोचा चलिए मस्ती भरे गीत से आगाज करते हैं प्रोग्राम का। और शोक और चंचल गीत है, बड़ा लुत्फ आता है सुनने में। तो चलिए सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद मिलते हैं।
1: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: क्या गीत था, यकीनन आप सभी दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। कुछ कुछ सच था इस गीत में और आप भी जो है वो अग्री करेंगे, तो एंजॉय किया होगा आपने गीत। हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप दोस्तों के लिए पेश किया था और बड़ा लुत्फ आया, बड़ी हंसी आई मुझे प्रोग्राम के मतलब गीत सुनने के दौरान में मुस्कुराता रहा, हंसता रहा। ब्यूटीफुल सॉन्ग आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में, फिल्म का नाम था कल की आवाज। तो दोस्तों चलते हैं, आप टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं जनाब 11:16, यानी कि 11:16। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा। वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, ढेर सारी दुआओं का, आपके नाम करते हैं ये गीत। और उसके बाद गुलाम भाई आपकी जानब से आपके पूरे स्टाफ के नाम करेंगे और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम करेंगे। और यही गीत जनाब इस वक्त पूरी टीम काम करी है, मलिक इम्तियाज, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर, इफराज। दोस्ती का गीत है जनाब, अच्छा गीत है, अच्छी शायरी है, दो अच्छी आवाज़ें। एक बार फिर आप सुनेंगे आशा भोसले और कुमार सानू को। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दस ब्रेडफोर्ड 7230303
2: Generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement where Bhangra, electronic beats and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2pm with the event from 3pm until 8pm. Tickets are just £25. For more information and tickets visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.

जी दोस्तों, अभी आपने कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में प्यारा सा गीत सुना और एक और प्यारा सा गीत आ रहा है। कमर्शियल का टाइम होने वाला है, हम चाहेंगे आप जल्दी में ये गीत सुन लें। एंजॉय कीजिएगा इस गीत को।

दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। चलिए एक और प्यारा सा गीत आप दोस्तों के नाम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ आप सभी इस गीत को एंजॉय करेंगे। बड़ा एंजॉयबल गीत है, दो प्यार भरी आवाजें हैं, तो सुनते हैं जनाब और एंजॉय करते हैं ये गीत।

0: जी दोस्तों, अभी आप कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को सुन रहे थे और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:44 यानी कि 11:44 तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा फ्लैशबैक की शक्ल में लता जी और मोहिंद्र कपूर की आवाज़ों में, और हडर्सफील्ड से वाजिद भाई आपके नाम करेंगे और हीरा खान साहब शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे। हीरा खान साहब फिर अभी आप फ़ोन कर रहे हैं तो अब मैं तो नहीं उठा सकता क्योंकि मैं बातें कर रहा हूं, लगता है आप रेडियो सुन नहीं रहे हैं, खाली मुझे टाइम पे फ़ोन कर रहे हैं। तो जनाब तारिक ज़ुल्फ़ी साहब आपके नाम भी करेंगे और उसके बाद जनाब चौधरी मनीर साहब चक्की वाले हमारे प्यारे दोस्त जो वो भी कॉल कर रहे हैं जनाब, तो आपके नाम भी करेंगे। वैसे चौधरी मनीर साहब मैंने आपका नाम लेना ही लेना था, अच्छा हुआ आपने फ़ोन कर दिया। और उसके बाद इसी गीत को गुलाम भाई आपके नाम करेंगे, चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। और जनाब इस वक्त मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम करेंगे, स्पेशली जनाब हमारे शकील बाबा हैं उनके नाम करेंगे। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735 043

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना महेंद्र कपूर और जनाब लता जी की आवाज़ों में, फिल्म नागन से लिया हुआ ये गीत था। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले गीत की जाने। प्यारा सा गीत है, उदय नारायण की प्यारी सी आवाज़ है, आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे है। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप साथियों ने पसंद किया होगा। कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करें और थोड़े थोड़े तेज गीत पेश करें, क्योंकि हमारे प्रोग्रामों में अमूमन बड़े तेज गीत होते हैं, मस्ती भरे गीत होते हैं, क्योंकि जो दोस्त काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़े तेज गीत होने चाहिए ताकि वो काम तेजी के साथ करें, क्योंकि मूड अच्छा हो जाता है। जब मूड अच्छा होता है तो बंदा काम भी अच्छी तरह कर सकता है। तो चलते हैं जनाब, अब तेज थोड़ा गीतों का सिलसिला शुरू करेंगे और कोशिश होगी ये दो घंटे जो बाकी बचते हैं प्रोग्राम के, इनमें थोड़े तेज तेज गीत ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एक ऐसे गीत से जो बड़े लोगों का फेवरेट गीत है। हाजरा जी, आप सुन रही होंगी, आप का फेवरेट गीत हमारी प्यारी बहना सादिया का फेवरेट गीत था। वो तो पाकिस्तान में नहीं, अभी तक तो सऊदी अरब में उमरा कर रही है, तो फिर पाकिस्तान जाएंगी। तो एनीवे हाजरा जी, आपके नाम करेंगे गुलाम भाई, आप भी इस गीत को पसंद करते हैं, आपका पूरा स्टाफ इस गीत को पसंद करता है, उनके नाम भी करेंगे। मलिक इम्तियाज साहब, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, मेहर, बाबर, इफराज, आप दोस्तों के नाम भी करते हैं और कुछ सहेलियां काम कर रही हैं बड़ी मेहनत और लगन के साथ, जिनमें नजमा, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा, उनके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं गुरदास मान और साथियों की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत गुरदास मान और जनाब साथियों की आवाज में ये सोज बड़े बोल थे लेकिन म्यूजिक जो है वो लाइवली था। यकीन आप दोस्तों ने जो है पसंद किया होगा इस गीत को। आप दोस्तों कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद टॉम साहब फोन करने का शुक्रिया और आप सबीना के लिए गीत सुनना चाहते हैं, तेज तेज गीत होंगे आप सभी दोस्तों के लिए। और प्यारी बहना शाहीन साहबा आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी थोड़ी देर के बाद कोई गीत करते हैं, आने वाला गीत थोड़ा मस्ती भरा है, आप अगर एंजॉय करना चाहें तो एंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद जनाब हम आपसे मिलते हैं। लेकिन कमर्शियल पे जाने से पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:15 यानी कि 12:15। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद टॉम साहब आपके लिए मस्ती भरा गीत आ रहा है, एंजॉय कीजिएगा।

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165. Raman 078-341-77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों, अभी आपने अभिजीत और अलका यग्निक की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, और एक और प्यारा सा गीत आ रहा है जनाब। और ये टॉम साहब, एक बार फिर आपकी नज़र करते हैं, आप पर रेगुलरली अब हमें सुनने लग गए हैं। ये पता है कि सबरीना आपको मजबूर करती हैं कि प्रोग्राम सुनना है, तो जनाब आप फिर उनकी बात तो नहीं टाल सकते। तो एनीवे, ये दोनों के नाम गीत करते हैं और शाहीन बहना आपके नाम भी करते हैं और तमाम सुनने वालों के नाम करते हैं। स्पेशली इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करे मज जाते हैं फोन पे लगा रहा और गाना खत्म हो गया तो दोस्तों वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल का कमर्शियल के बाद एक और प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ
2: मैं जानती हूँ उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था
1: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है
2: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
3: For your family treat this summer.
4: Visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
4: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
4: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन इस शौक चंचल गीत को आपने पसंद किया होगा। और अब चलते हैं एक और प्यारे से गीत की जानेब। और ये गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम, जहां कहीं भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, आपके नाम किया जनाब। स्पेशली गुलाम भाई आपकी जानिब से, आपके स्टाफ के नाम, नवीद भाई आपके नाम, और हाजरा जी, और उसके बाद अमरीन सभा आपके नाम, शाहीन बहना आपके नाम, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।

0: हम तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं सनम। अभी उधर नारायण और अनुराधा पौडवाल की प्यारी सी आवाजों में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना और ये गीत प्ले किया तो गुलाम भाई आपका फोन आ गया। शुक्रिया आपका फोन करने का, अच्छा लगा सुन के कि आपको ये गाने अच्छे लग रहे हैं। तो जनाब जो आने वाला गीत है कमर्शियल के बाद वो भी बहुत ही प्यारा है, बड़ी प्यारी शायरी के साथ है और मनहर उदास की आवाज़ भी तो प्यारी है आपको पता है। तो जनाब वो आपके नाम करेंगे नवीद भाई और नहीद बहना, बड़े अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनी। आपकी तबीयत कुछ ख़राब है और हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, किसी का मोहताज ना करे। और अच्छा लगा बहन से बात करके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और थोड़ी देर के बाद आपके लिए ज़रूर कोई गीत मैं प्ले करूँगा। और अब गुलाम भाई के साथ साथ वाजिद भाई अडस्वीर से आपके नाम भी और जनाब चौधरी मनीर साहब चक्की वाले उनके नाम हीरा खान साहब, तारिफ जुल्फी साहब और उसके अलावा जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब और उसके बाद जनाब दीगर जो दोस्त इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, बड़ा प्यारा गीत है। मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम भी करेंगे। और इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी करेंगे और दीगर दोस्तों के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंड ट्रैक, योर टाइम चेक।

हाय हाय हाय हाय हाय क्या हुआ, लगता है कि माइक बंद था और मैं बातें करता रहा और अब मुझे नहीं पता कि कहाँ जाके सिलसिला रुका बातों का। तो आई डोंट नो मैं क्या कहता रहूँ, कहाँ तक आपने सुना अब समझ नहीं आई। अब निगाह पड़ी तो देखा ये बंद है, पता नहीं कैसे माइक बंद हो गया, आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई समझ नहीं आई मुझे। तो चलिए एनीवे मैं उम्मीद रखता हूँ कि सभी दोस्तों का जो नाम लिए थे इस गीत के साथ, यानी कि गुलाम भाई आपके लिए था और वाजिद भाई और नाहिद बेन आप बीमार हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे, किसी का मोहताज ना करे, शुक्रिया फ़ोन करने का। और उसके बाद गुलाम भाई, अभी मेरे ख्याल में नाम सभी के शायद नशर हो गए होंगे, तो चलिए यहीं रोक लेते हैं और कमर्शियल पे जाते हैं, कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 01274735043।

बहुत ही प्यारा गीत मनहर उदास की प्यारी सी आवाज में। और दोस्तों अब आने वाला गीत जो है ये सभी दोस्तों के नाम करूंगा और जनाब ये गीत हमें खबरों तक ले जाएगा और अगले आवर में आएंगे तो सभी दोस्तों के लिए गीत पे प्ले करेंगे, स्पेशली नईद बहन आपके लिए भी और दीगर दोस्तों के लिए भी। तो चलेंगे जनाब अब अलका याग्निक और कुमार सानू को सुनेंगे, उसके बाद ही दोस्तों आपसे मिलते हैं। और याद रखिए 2 बजे तक मेरा और आपका साथ है, ज़रूर साथ निभाइएगा, साथ साथ रहिएगा। आप सभी साथियों का ज़रूर शुक्रिया भी अदा करूँगा।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं जनाब। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। कोशिश होगी ये आखिरी आवर जो है इसमें भी अच्छे और प्यारे से गीत आप सभी दोस्तों के लिए पेश करूँ। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने अनुजा पडवाल और मनहर उदास को सुना और 1983 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और यानी कि 43 इयर्स हो गए, 43 साल, माय गॉड। और गाना सुने तो लगता है कल ही रिलीज हुआ है और इतना पुराना गीत हो गया है, अभी तक भी सुनने में इतना लुत्फ आता है, मज़ा आता है और एहसास ही नहीं होता कि ये 43 इयर्स ओल्ड जो सॉन्ग है। तो एनीवे, अब इसके साथ ही टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:13, यानी कि 13 मिनट्स पास्ट 1। तो कमर्शियल की जानिब चलेंगे। कमर्शियल के बाद मस्ती भरा गीत होगा, धूम धड़के वाला गीत होगा, सभी सुनने वालों के नाम होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद दोस्तों मस्ती भरा गीत सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

ये दोस्तों अभी आपने मस्ती भरा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने इंजॉय किया होगा इस गीत को। और अब चलते हैं जनाब अगले गीत की जानिब। ये भी प्यारा सा गीत है, आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इस गीत को भी इंजॉय करेंगे। अभी हमारा और आपका जो साथ है थोड़ी देर तक ही है, तो इसे ज़रूर निभाइएगा, साथ दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, इंजॉय कीजिएगा।

0: क्या गीत था, क्या गीत था, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब एक और प्यारा सा गीत आने वाला है जनाब, लेकिन कमर्शियल के बाद आएगा। तो चलेंगे जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद जनाब इस गीत को नजर करना चाहूँगा गुलाम भाई आपकी जानिब से, आपके स्टाफ के नाम मलिक इम्तियाज साहब, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दत्ता, उमेर, बाबर, इफराज आपके नाम, और नजमा साहबा, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा आपके नाम भी करेंगे, और आपके साथ साथ सभी सुनने वालों के नाम करेंगे, स्पेशली तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं उनके नाम भी, और दीगर तमाम दोस्त वहाँ जो बैठे हुए हैं उनके नाम भी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, और इसी गीत को मुना जी आपके नाम भी करेंगे।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

क्या गीत था दोस्तों. अब जो है हम जो है वो चलते थे क्योंकि वक्त बता रहा था कि जो है वो कमर्शियल का टाइम हो गया है. और लेकिन कमर्शियल से पहले जनाब हम आप दोस्तों के लिए जो है जोहर की अजान जो है वो प्ले करने वाले थे. तो चलेंगे क्योंकि सिस्टम में अजान आई नहीं, लेकिन हम चलाएंगे अजान और आप सभी दोस्त जो हैं वो जोहर की अजान सुनिएगा और उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं. सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग.

जी सामिन, ये आपका अपना संडा रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और अभी आपने जोहर की अजान सुनी और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा और आपका साथ तकरीबन 15 मिनटों का रह गया है, बल्कि उससे भी कम रह गया है। और अब क्योंकि कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद आप जनाब एक सदाबहार पुरानी कवाली सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा। और ये सदाबहार पुरानी कवाली जो है, ये सभी सुनने वालों के नाम करूँगा, यानी कि ग़ुलाम भाई आप के नाम और मलिक इम्तियाज़ साहब, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दत्ता, उमैर, बाबर, इफराज आपके नाम भी करेंगे। और इसी कवाली को नज़र करना चाहेंगे, तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। और उसके अलावा वाजिद भाई एडर्सफील्ड से आपके नाम करेंगे। और आपके साथ साथ चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले, उनके नाम, हीरा खान साहब के नाम, तारिक जुल्फी साहब के नाम और उसके अलावा दीगर जो दोस्त इस वक्त सनराइज रेडियो सुन रहे हैं उनके नाम भी, चौधरी मुजफ्फर साहब के नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम भी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सदाबहार पुरानी कवाली, उसके बाद आपसे मिलते हैं।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: My favourite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
5: We love Sunrise Radio.
6: The greatest station, radio station in the world.
7: Sunrise Radio.
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

हमारा डे और साथियों की आवाजों में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारी सी कवाली सुनी और इसके साथ ही दोस्तों मेरे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है। अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात जनाब संडे मॉर्निंग 11 बजे होगी, तो तब तक के लिए मुझे आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा। अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात संडे मॉर्निंग 11 बजे होगी। आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा। हमारी जन्म से खुदा हाफिज़। अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday, the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement where Bhangra, electronic beats and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self. 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights, and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday, 11th, and Saturday, 12th September, 6 p.m. to 8 p.m., and Sunday, 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call A.K. Basra, 07977-201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
4: My favorite radio station, Sunrise Radio.
5: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446.
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: My favourite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move.

0: जुतियां भी कसीगियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Ladies and gentlemen,
3: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
4: Number one.

क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: सीगियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।